फुंका हम मार्केटिंग ताकु बुखु एफ एम जेन्तुनि फुंका संगनि पांडवन रक ज तोन लाम छगो 101.6 एबा सारा सपन दक मेगा हर्ज नरक पांड खनाय तंग बय नरक बय तंग तापोस तोन किचिंग रनि ताकु मार्केटिंग ताकु बुखु जों तिनि सालगामा पांड कक सलायनाय तिनि

आओ आशिक दरा तो खाना क्या वाटी जरा वा संग भागे तंगना नां आप नो रोगी कोक्ते जतानी सखंग प्रयो फिर के तब खाना लाइने कोक्तम रो और तालीनो बस कांग साल चिदोक साल तो रोतो जात्रा आप नो रोगी न्यों सारी बखांग बाइकरा जगन्नाथ जीव मंदिर निचिमी रोत अंकरे बाइकरा हाथी बेराय यान हने साजाका तै आजागो साजाका नायमथां बदल लग्न बरगनि बरगनि उथुमा याखबा खबांग न तै माखुंग र ग्यांग उयांग खनेन बरग नायखनि खलायन तै पाइथागो कखथुम तै हुकुमु नायखुंग बखांग तै साजाका साल सिनि रमै सानजा ब्रुम ब्रुम न हुकुमु पांदाराव बहायन अ रथ जात्रा न रगै रथ जात्रा तेर न रगै जुगल इज्जत नै हनै साजाखा तै आबनर आबननि बारा जुदो जुदा हापंगनि नाखुनु खक्तै बहायन रथ जात्रा तेर जुगल इज्जत नै हनै साजाखा अबहायन छाब्रुम म बहायन आसाल रथ जात्रा तेर

0: बसकां जुलाई नि सालमारी थामतिसा को 31 जुलाई 2026 नि बिसिङ अनलाइन कयमुं याफानानि नांनाय आबनुलते यासाक जागलाखिनि हास्ते हापांनि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल नायखुनि बखाखते अकक्टमा साखलाय जाखा
1: आव हरिगे सिंतावक्ते कैसना लायना त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन सोसाइटी नि बखाखते एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कयब्लाय एडमिशन बगै सानजाका आओ सजका चलाताई बिरे चलारक निबागै तंग आचुक थाय कायदक सिखलाय तै बिरोंनि के बिरोंनि थामसि तै चलारंनि थामसि बेबगै काय डक्सि तंग आबन बागै कय बिलेननि सालमारि रखनके ओ जुलाई तालनि साल निशेसा सालनि बिसिंगन रना नांनाय तै आबन बागै एडमिशन टेस्ट रक नहाजोंनाय एडमिशन टेस्ट के ओ जुलाई तालनि साल निजितक साल नहार जागान हनि साजाका जरा अंके फुं दामसि सानि सिमि साजार दामसा जरा एडमिशन टेस्ट नहाजोंनायनि साजाखा
0: फारि खसारा नबाति बनि सिकां बारेनि ककिसा खनालाय ना
1: त
0: नबाति बनि सिकां बारिया ककटमा रोगि सेमेनखा बुसकां दामनि सिब्रियो ककखै तिनि फुंनि सति दामबातामै सति थामसिनि सिमि खना फुंनि दामबातामै सति थामसिनि कक साजाखै दङ नखा असुमै कलबजक तंनाय तुंमारि तंनाय तुंसामारि 32 डिग्री सेल्सियस तुंख्लाइमारि 24 डिग्री सेल्सियस मियानि तुंमारि समानि अनुगजाखा तुंसामारि 30.2 डिग्री सेल्सियस तुंख्लाइमारि 26.2 डिग्री सेल्सियस नबरा सिबुक सामारि सिबुख्लाइमारि 98% ते 78% गानागिनि तंगान थांनाय दामनि सिब्रियो ककाय तिनि फुंनि दाम बादामै सति थामसि जरा 14.8 मिलीमीटर वाते फाइका लुकुरकनो हजाक खाइ रिजागो बेलाय केबांखा वाते हास्तिनि बाक्सा बाक्सा हांखर वावि फानो मानो आसिक जरा खनाबायखा नबरती बनि कक
1: आ फारिखे जों तब किसा खनालायनो सामुंनि कक डायरेक्टरेट अफ Youth Affairs and Sports Gop of Tripravo Aro Athletics Kasam Champion Nungzak Omahai State Level Ni Brogno Koiblanen Bagi Chazaka Contractual Fix Manli Pesis Tang Jagana Jodu Wotrang Jagana Hi Chazaka Abo Talamana Rang निसि बा सायख्लाय रोजोंनायनि साजाका गुमटि डिस्ट्रिक्ट खेलो इंडिया सेंटर अमरपुर जुदु कोचिंग सेंटर नै आरन बगै कासा आचुक थाय बिसानि बगै ते कैसन के खवाई डिस्ट्रिक्ट आरो बहिनो खेलो इंडिया सेंटर एट सहित भगत सिंह जिमनासियम हल खवाई आरो बहनियो जुदु तंगनाय खरकसा बिसानि बागै कयब्रानने निकुमांगे टुर डायरेक्टर यूथ एफियर्स एंड स्पोर्ट्स फोर्थ फ्लोर शिक्षा भवन ऑफिस लेन अगरतला 799001 अनिकमाव रहना नंनाय पाइथक सालनके ओ जुलाई तालनिनो साल निसे थाम सालनि बिसिंगो रहना नंनाय हिनि साजाखा आशिक जरा खाना लाग्या सेबगो बरक तलांमानि कग्र
0: फालिताबो खाना लायनो रसापुंना
1: आव
0: रसापुं रसाबो खाना नाय
1: रसामुं

नंबर करेंगे मानो और नंबर उनका 9485007172 और बनो रख करेंगे मानो रख बैठो तापोस्त्र ने टॉपिक उनका रख जोतो ने सिवाय का कॉक मार किसी ने ताकू को कॉक कैसा भी या खराय हालक बो मानी चीन होता वो सिंह खरक्षा खरक्षा क्लाई कबांग मां बरोक तंग ले बरोक निबिसिंगो कथलाई तंग ले मानी वन सुकुंग या फलाई तंग ले मानी

0: नि हदाव जों खरक्सा खरक्सा ख्लाय गोबांमा बरक दंलायो बररकनि बिसिङो गथलाय दंलायमानि वानसुकुं याफालाय दंलायमानि चाबलाय गोरोंसा थानजांलाय दंलायमानि हामग्रायनि सामुं दांलाय दंलायमानि अबनि याफां ओंखा कक अकक अब दायसा दफानि फला हिनि बनि बागिन महात्मा गान्धी साव बसाओ कैसा दफानि फला ओंखा कक आ कगन दफानि फला दंफो जाफन कक दु कैसा फाइद नागिरना साबनिखा हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: फोन कहाँ ताको
1: कहाँ ताको अब दारा ना फोन कहाँ मैं हम बेरु
0: नें कॉक डुक नंबर के तालो कॉल खाई ना भाई शाही मन कैसा
1: अब आंग सुकांग ना
0: सही ना रखा ना
1: सही ना रखा आंग अनेक बार कॉल खाई जब चाय पार्टी ने कॉल हाबी में मम्मा
0: तीनी से चौराप सा हिंदा
1: तीन खाई पुला खाई क्या नंग रोम लिया का आउ कहीं का खाई क्या था
0: हम भाई
1: अरे बुमु का जोहर लाल शिव का कामिनी
0: और बियांग फसिंग था
1: तो कालीनगर वरिया
0: जिरानिया थाना दखले नंग अबो
1: बुजुंग नगर
0: पियास ना दस हाले तीन तो पिक नंग सिकना कॉक
1: तीन तो और फिर मैंने कॉक बोटा मांग का है
0: कॉक
1: कॉक ना जब हमें इनमु
0: साढ़े
1: कॉक सारा तो सुन तो ले मैं कॉक बाय कॉक ना बरोक ना सिनिलायो हाथा निपा ना कॉक सारा कुनु दिनो या सुन कॉक माया कई बाबा कई उसी या कॉक ना दुनिया ना नार गए दिन जो तो पिशु काम हन्य छलाइना नि टोंलाइना नि बुजिलाइना नि नुफुङो पप साबलाइना नि बुजिलाइना नि आबोनो आ कक सारा सों जों टों सिमे सिनि कोंग न थला आत्मा आं जे बुजि माता
0: आव हामबाय
1: हा
0: हामबाय ते सानाय देखो हेलो
1: खाना
0: ताखु जोहर हामबाय
1: खाना तो खाइ फनो ताइ पा खालां सिखो
0: तो सादिया कौन सा सा सादी था इनका तंग बता तंग बा
1: हिंदी खाने रंग और खाई तो अब बहुत मा तो मा उनको बहुत खाने बोरा बांग्ला खाने में सुन कॉक बन खाई मानो बहुत बहुत खाने बोरा राजा
0: कॉक कैसे सीमी मुंग दो खाने है दीपा
1: कॉक कैसे दो खाने सीमी मुंग आ कॉक सारा सुन बाकी उस समय लांग मा इन कॉक नो लांग मा
0: हम बाय हेलो
2: हेलो दारा ना दलाल चुना पुंका हम
0: ताको ब्रिजे सुनखना ना
2: दारा कोलंका आंटे बीच को कलर रखा खाया दारा
0: दो
2: माने जी इतनी इंजे को शेर दारा इंजे को इंजे दलाल चुनो माने काम सुना है जितना जागा तो को खाना तो को काम तो है दबा इंजे सुन को काम थकान के दलाल चुनी चीनी हालो दलाल चुनी बोला जाओ है दबा इंजे सुन तबुन ने ऐसे ले दे खाना लाये दलाचे मा छन हालो ब बलाय तंगा बाय छन दलाचे हाम हन मारो दारा छन दे छन थमय को बाय बरो ब थारि मा ना बरो ब हाम खन ना छन तेरा थाकि नि आफु थाका छन जतन को ना फन लाग हे देबा
0: आसै फेफ्रु से आसै फेफ्रु चेराय काप ग्राव आव कसे कोकता हे देबा
2: माने जे जे दपुल आम आम माल्टा अंक आम आम
0: মানে কিছু তাকে কল খাই দিন 9485007172 9485007172 2326253 और नंबर कॉल खाई जों दिनै

हजुर अब जुन फुङ्गा हाम दाइ लाम्सुगु खनाइतोङ मारेकी सिङसङ सारासा पोइन्दोक मेघार आकाशवाणी आगोटोला एफएम जयन्तनी ताबुक फुङ्नि दिपोर्जोरानी कक बरक नि पान्दाव हजुर अब थोङ्गाङ आर सि मल्लिका नरुबाई पुइलानिसनि बाइथाक जरानमै नरुबाई टङलांनाय फाइदि हिंगे तिनिबो तामतम पान्दा टङनाय नरक तो बाक्सा तो साइमन जाग्न हाइफान आं हजुर अब नरक न सावै खनारनाय तिनिबो तामतम पान्दा टङनाय ताबुक पुइलाव नरक खनाय माने हासिग निर सामुं पान्दा आ जागाव नरक गबां मा दो फानि कक बाय रसामुं खना माने दाय याबुनि कसार माजर नरो खनाय मानै कक बर कक बाय कक थुमा बुबाक दाय याबुनि यागलो नरो दामसिनि दिपोनि दामसिनि तामि थांबुर नरो खनाय मानै तिनिनि वान सुंबुं पान्दा दादाक सिदाके नरो कक दुख बाय करेंगै आं बाय सालाय हरै मानै तिनिनि हो पान्दाव दाय हाय हाय दिपोनि दाम सतामि थांबुर हंगे नरो खनाय मानै काहाम दोंदि रिङै थोंगलांमा তাই হাই নাই বাই থাক ফাশিং নর খাই মানে কক বড় কক বাই কক তুমা বুবাক রাইদি হেঙ্গে অজরাব নরক সাইমানো তাবুক পুইলাও নাসেক নির সামু পান্ডা সঙ্গ সেঙ্গে লাইসিনে নরক খাই দো সারাসা পয়েন ডক মেগাহার এফ এম জয়ন্তী তাবুক হাসেক নির সামু পান্ডা সঙ্গ হাসেক নির সামু পান্ডাও খনাতো খনাতো রুসামু রক খানি ফাশিং থাকলেন ফাইদ হজরা হঙ্গে পুইলান রেসামুং খনালাইনাই রাদি শান্তি মল সমনি খুক্তই রেসাবজাগ রেসামুং

बल्लाई नो खाना तो तोगर सामू आशा जरा ते नो रखना बाहिया सुमित ने खोक तो ये रिसाब जरा सामू आओ सिंग साइमा नो ताबुक ने ओजरा वो सिंग कबाग मा हापांग ने सेबुक रोक माना ने हिंगे बल्लाई नो तुगो आबन बागे सिंग कबाग मा नो रांग पुशा आजिना नी लामा नाइटुक लायो कबाग मा बोरोक नो गामि आमसाइरगो बाक्सा बाक्सा बा आजिनानि लामा मानसेकिया बाहायके आजिनानि थाङैबो आहायनो थाङै फाथार हासिरगो थाङै गिफिलै फाइमा रक्सिन नगो आउसिं अलंकानो आहायनो वासुसु आपतेखे थांखेबो सिनि थानि आमहाय जों जालक फायो जों कबांमा सिनियो हास्तेनि सिमि सामुं स्रंगै याखवै फाथार हासिरगो थांखे देव गोरोंखे गाहाम गोरां फैसा आजि मानानै होनि वानसुगु आबोनि बागैनो डि डि इउ जि के वाइ कैसा जिनि भारत हाफां बाय सिनामजा गामियाम सायो तंनाय सिख्लि सिख्ला सिख्लि रंनि बागै आरो नों सामुं स्रोंगै मानाय मागनां न' नों आरो सामुं स्रोंगै मानाय स्रोंमानि यागुल' नर' नों आ स्रोंमानि नों रोंखांगे नों पासजों खांगे पास नखनसिनो जों एग्जाम रग्रुवै परिखा रग्रुवै पासजों खांगे तेखिसा क्लासो कासायो होनै हामनो हाय नों आ ट्रेनिं रुवै पासजों खांगे न'न' सामुं जेसेखौ फानदो जागौ आबोनो तै आबोनो आबोंखा दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना होनै आबोनि बेबाग बुमुं आरो बयसनि निनि उमरोंना नांनाय पन्द्रनसिनि पैत्रिस हायाखैबा बुरि रगनि बागै हायाखैबाथाय गायसे गुसु बर' रगनि बागै पाचल्लिस हायाखैबा फर्टिफाइभ इयार्स

खना त तोग्र सामुङ नरखना बाखिया बिमल देवरमानी खोक्तै रिसाबजार सामु हाउ काम थंग दिरिङि थंग लांगमवासिं गबांग मा खोक नखना लाखिया रिसामुङ खना लाखिया ताबुसिनि जोरा फाइथा खासिङ थाङै दंखा हाइफेन पाया खसिं तेबो खना त खना तोग्र सामुङ खनायु मानखौ फारियो जरो खना लानायसिं धर्म सरन जमातियानि खोक्तै रिसाबजार सामुङ

0: अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपने पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सालमारी निसिमे आगस्टनि सालथामसि जरा हांकरनि जत नक लेखामुं सेंजागानो हांकर नायकलफां डॉ सिद्धार्थ सिबजासवाल तिनि सिपाही जला हांकर मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य सामंगबतांनि फिल्डनि बेरामनो चेंगे रेखा आबलरुगी विशालगढ़ महकुमार निबिसिं मधुपुर कतय शाखाम सेंटर शाखाम शिविर संसार जाखा बुस्कान सांग्रंग साल रथ जात्रा आबनरुगी मेलाघर संसाजाक नखा सालचिनी लाइबुमा गनां रथ मानिकन सालचा सकांगनो चेंगे रिवानो मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉ मानिक साहा साई साई तंगथारनो चाजाकनाय रग मेलाघरनि जगन्नाथ बारी नखलाव संसाजाक बानिकते तेरो मानजागानो रथ जात्रानो रुगै नायमानि यापरि रमखा हास्ते जों फेरां नायख्राय नायखायनि दागिफां विश्वजित बसु थलमुंकायसाब रथ जात्रा ओ मानजाकनाय रकनि मुंसा देरामुं पातियातै यापरि रमनानि बागै क्रोंजाक अफिसार रकन दागिखा तबुक हायुंकाप फुटबलनि कक्तुमा फुटबल हायुंकापनि पुइला सेमिफाइनालाव भारतनि जरा हर दाम चिनै सती थामसिब फ्रान्स बाय स्पेन थांलायानो आमेरिकानि डालास स्टेडियाम ओ मेस अंगानो खनातै कायसा सेमिफाइनाल मेच ओ इंग्लैंड बाय आर्जेन्टिना थांलायानो फाइनाल मेच अंगानो बुस्कान ककतिसाल सेमिफाइनाल चेन्नाय बदल काय नै चिनि बिसिंग उल थाम थायनि बागै मेच जंसा जागानो बुस्कान चा साल भारतनि हर दिबर तबुक नबातिबानि कक्तुमा भारत निनबातिबा नायखुंनि बखाक्ते साजाकार सालचि बंगोप्तो युंगानानि पश्चिमबंग बांग्लादेशनि हापुंनि तलानि नबा शिबसामाबै वाते कबां वावै मानो अ तानि जिसा सालमारि जरा त्रिपुरानो खबै नागालेन्ड मणिपुरते मिजोराम कबां वाते वावै मानो हनै हजाकमुं रजाखा यांगो आगरतला नबातिबा नायखुंनि बखाक्ते बिसकां दामनै सिब्रयो सालथां हांकर सिपाही जला ते सालग्रा हांकर कबां वाते वावै मानो हनै हजाकमुं रखा नबातिबा नायखुं खना सालनि साकानि तुंमारि थामचिब्रिते खामानि 26 डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि तंगानो तिनि सालनि साकानि तुंमारि तंगानि थामचिब्रि दशमिक दक ते खामानि 26 डिग्री सेल्सियस ককতুমা পাইনান সেখান ককতুমা বুবাক রক্ত এই বৈশা সাপিরো ভারত হাকতর হাইং বেরেম নি রি চুম ফুনুকমং ভারত টেক্স নই সাই নিচিতক তিনি দিল্লি কতালনি ভারত মন্ডপম সংসা জাখা মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি খক চুকু চিথাম রজাক রাংনি বকবাং কিজাস তাঙ্গতাঙ্গ চেঙ্গই তে হলংথং কাইখা বরফ লেখামুনি পুইলা বেরেম অ জুলাই তালনি সাল চিসনি নিসিমে সালথাং ত্রিপুরা হাঙ্কর চেঙ্গজাগানে বাইথামি লেখামুনি সামুং ফুটবল হাইং কাপনি পুইয়া সেমিফাইনাল হর দামচিনি সতি থামচি ও ফ্রান্স বাই স্পেন থংলায়ানে কক্রক বাই ককতুমা পরিমুং তিনি বাগৈ অরণ পাইখা উনি ককতুমা আবাই ইংগানে খনাফুং দামসনি তাময় সতী ব্রীচিও

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों यानी लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत

0: भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर

0: संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये

भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर।